0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

राग देवगंधा। बड़े ही सतगुरु सच्चे पातशाह ने इतनी कृपा की है कि ये रागा नू गा के आनंद आता है, लेकिन ये राग गाउण वास्ते सिक्ख्या की लोड़ है। सीखन तो बिना, वैसे तो कोई भी राग सीखन तो बिना नहीं आता, पर ये रागों का जरा मिश्रण है उन्हें गाना सतगुर कृपा कर तां गवाउंदे हन। ये बच्चे बैठे हैं पंती साज लेके, ये भी जिवें जिवें सीखते जाएंगे अगे इन्हां नूं भी इन्हां चीज़ां की नॉलेज आएगी, पता लगेगा कि कीर्तन शैली गुरु नानक घराना की है, रागां नूं कीवें गाया जाता है। जो 31 राग हैं जां दसम बाणी दे राग हैं जां रागमाला दे राग हैं, उन्हां नूं कीवें गाना है। सो आओ राग देवगंधार महला पंजवां, पंजवें पातशाह की रसना तो उच्चारण किया है। अपने हर पहे विनती कही है।

आसावरी सुधंग एक एक शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च। इसे करके साडे गुरु साहिबान महान बाणी आखदी है आप नारायण कला तार जग मह परवरे निरंकार आकार जोत जग मंडल करेओ। सतगुरु जी वो परमेश्वर का रूप आकार विच लैके आए धन गुरु नानक जिन्हां ने ये 33 सास ते रागां दी बाणी गा के ते सुनाई ते गाउण दी जाच भी दसी जो अज असी उन्हां दी कृपा ना ये गुरु नानक घराने दीआं रीतां आप जी नूं सुना रहे हां। ये भी दो रागां दा मिश्रण है सो आओ इक ताल दी रीत है। हाँ अन्य दिन

आकृतियां देखे वो धार्मिक भी होवन। ऐसे कोई लंबे चौड़े आंकड़े नहीं ने, बहुत थोड़े आंकड़े ने। खैर इस वक्त इस पहलू नु ना छोई है। जाग जाहिद हर्ष नासी बूम आलम ने शब्द, बूम कहने ने उल्लू नु, प्रजा इंज होवे, जनता इंज होवे जिवें उल्लू, उल्लू हनेरे च रहिंदा है, प्रजा अज्ञानी होवे, अंधी रैयत ज्ञान विहोणी, भाए भरे मुरदार, कख भी ना समझ होवे, राजनीति की है, धर्म की है, कुछ भी ना समझ होवे, ते राजनीतिक भी उन्हां नू ठगन, ते धार्मिक बंदे भी उन्हां नू धोखे च रखन। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि शाही एक अयारी है, फकीरी भी मकारी है। कहिंदा मैं देख के हैरान हाँ, जिहड़े राजनीतिक ने मकार ने, पर जो फकीर ने वह भी मकार ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई राजनीति दे नां ते कौम नूं धोखा देंदा है, कोई धर्म दे नां ते धोखा देंदा है। साडी कौम दे इस तरह दे रज के ने जिन्होंने कौम नूं रज के धोखा दिता, धर्म दे नां ते भी, राजनीति दे नां ते भी, रज के, कमी नहीं। और बार बार जो धोखा खावे कहिंदे ना अज्ञानी होवेगा, ना समझ होवेगा। सार किताबली दा करता राजनीति दे जिहड़े ग्रंथ ने वैसा कहिंदे ते धार्मिक पुरश, एक दफा धोखा खा जाना मनुखी सुभाव है, गलती नहीं है। भरोसा करना मनुखी सुभाव है, ते भरोसा कीता अगले ने धोखा दिता, ठीक है, सुचेत हो जाए, सावधान हो जाए। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਤੀਜੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, आखिर भरोसा करेगा जिससे धोखा मिल सकता है। और भरोसे दे पात्र योग होने तो बाद ही धोखे मिलते हैं अक्सर। एक कथा लिखी हुई है पंच दसी दे, एक मुनसिफ की कचहरी च एक बंदा फरियाद करता है भी फलाने ते मैं इतना भरोसा किया, उसने मैनु धोखा दिता, वो भी कचहरी से। ते मुनसिफ उसनु कहिंदा जद इसने तेरे ते इतना भरोसा किया तू धोखा क्यों देता है? वो कहिंदा मुनसिफ फिर थानू भी समझ नहीं है, जे ये मेरे ते भरोसा ना करदा मैं धोखा दे सकदा सी, मैं तो धोखा दे ही नहीं सकदा सी। धोखा देण दे च मैनूं तां ही सफलता मिल सकती अगला मेरे ते भरोसा करे, वरना हो नहीं सकदा। एक दफा धोखा खा जाना मनुखी सुभाव है, दूजी दफा धोखा खाना मूर्खता है, और तीसरी दफा भी उसे तो उसे तरह का धोखा खा लेना कहने पशु पाना है। ये तो पशुता है, मनुखता खत्म हो गई, मनुखता रही नहीं। अंधी रही है तो ज्ञान वे होनी, बूम आलम में शब्द, परजल इंज होवे जैसे उल्लू हनेरे, कख ना समझ। इस शब्द का प्रयोग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया, संपद दौल झूल संग झूलत, माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी दे उल्लू नू गोगू कहिंदे, इंज घूमे जैसे उल्लू हनेरे, कख नहीं समझ, कुछ भी नहीं पता सच्चाई की है, असलियत की है, हकीकत की है। जाग जाहिद खर्श नासी बूम आलम में शब्द, तीसरी पंक्ति, दुस्द मुहाफिज बदबही खा शैतान नाजम में शब्द। दुस्द कहिंदे ने चोर नू, मुहाफिज रखवाला कौन होवे, चोर, चोर रखवाले अमन, ते इंतजामी ढांचा किस दे कोल होवे, शैतान दे कोलो, नाजम ओ होवे। इंतजाम करन वाला कौन होवे, शहर दा, शैतान। रखवाली करन वाला कौन होवे, चोर। धार्मिक बंदे कैसे होवन, खोते। हुक्मरान कैसा होवे, बगयाड़। वजीर कैसे हवन, कुत्ते। और दीवान कैसे हवन, चूहे।

0: आम प्रजा कैसी होवे उल्लू। मैं फिर अर्ज करा, बगयाड़ कौन बन जाता है? असंतुष्ट। असंतुष्ट मनुख किसे नु खाएगा, किसी की जान खाएगा, किसी की इज्जत खाएगा, किसी की धन संपदा खाएगा। और असंतुष्ट मनुख दे कोल जे किधरे ताकत आ जाए, उते लाशां बिछा देगा। 1 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। चंगेज खान जिथों लंघदा सी बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी। हलाकू खान दे घोड़े लाशां तो लंघदे सन। कहिंदे ने कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई रब नूं मनदा है, गुरु नूं मनदा है, परमात्मा नूं मनदा है, क्योंकि जिहड़ी उसकी कामना है वह गुरु तो बिना पूरी हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, गुरु नूं मनदा है। ताकतवर बंदा अपनी कामना की पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देंदा, एक पासे रख देंदा है। गल दोहां दी कामना दी है, धर्म दी नहीं है। ताकतवर बंदा अगर सामने रब नूं रखे परमात्मा नूं, क्या 1 करोड़ बंदियां नूं कतल कर सकता है? क्या सड़कां ते हजारां लाशां बिछा सकता है? कहिंदे ने ताकतवर बंदे नूं परमात्मा नूं एक पासे करना पैंदा है, उहदी कामना पूरी नहीं हो सकदी अगर रब नूं अगे करे, क्योंकि रब ते दया है, परमात्मा ते प्रेम है, परमात्मा ते निर्वैर है, परमात्मा ते निर्भय है, परमात्मा ते साबर है, परमात्मा ते समान दृष्ट है, परमात्मा ते विशाल है। अगर परमात्मा नूं अगे करे तो क्या करोड़ां लाशां बिछा सकदा है? क्या घरां नूं उजाड़ सकेगा? क्या किसी की असमत इज्जत आबरू धन संपदा जान खो सकेगा? कहिंदे ने ताकतवर मनुख हमेशा अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देंदा है, एक पासे कर देंदा है, क्योंकि उन्हें सामने रखे तो अपनी वासना की पूर्ति हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नूं अग्गे करदा, उहदे कोल कोई सहारा ही नहीं और कोई आसरा ही नहीं। ये परमात्मा तू ही मेरी टेक है, तू मेरी कामना की पूर्ति कर। वह भी कामना करके रब नूं मनदा है, ते ताकतवर भी कामना करके इनकार करदा है। सियाणे इस नूं समझणगे, पकड़नगे मूल गल कामना दी है, रब दी नहीं है। जिहनूं असीं धार्मिक दुनिया कहने हां, वह भी धार्मिक दुनिया नहीं है। यह भी मैं अर्ज करदे हां, अधार्मिक दुनिया ते अधार्मिक है, धार्मिक दुनिया भी अधार्मिक। एक बड़ी कीमती पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी, और मैं समझदा इको एक वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो ऐसा कह सकते ने, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पाप है, पुन भी पाप है। हद हो गई, पुन भी पाप है तो क्यों करिए, की लोड़ है फिर। ये पंक्ति मैं थानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी सुना रहे हैं, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पहले लभना पेगा कि मनुख पाप क्यों करता है। पाप करता है लोभ वस होके, हंकार वस होके, अज्ञान वस होके, वासना वस होके मनुख पाप करता है। ते मनुख पुन करे हंकार वस होके, मनुख पुन करे लोभ वस होके, मनुख पुन करे वासना वस होके, और मनुख पुन करे होमे करके। तो सतगुरु की बाणी कहती है फिर पाप पुन दे फर्क की होया, दोवां दे थले बुनियाद ते कोई है। अज्ञान करके पाप कीता, अज्ञान करके पुन पिया करता है। हंकार करके पाप कीते इसने, हंकार करके पुन पिया करता है। वासना करके इसने पाप कीते ने, ते वासना कामना करके पुन पिया करता है। फर्क की है, पाप पुन दोए एक समान। पापियां दे पाप ते पाप है गए ने, गुस्ताखी माफ पुनीत बंदियां दे पुन भी कोई पुन नहीं ने, क्योंकि थले हंकार खड़ा है। तीरथ बरतर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेह फल जात ते जिम कुंचल इसनान। तो मैं इस करा असंतुष्ट मनुख कातल बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, डकैत बन जाता है। संसार दे इतिहास दे च ये भरे पैने इन्हां दा जिक्र है। और संतुष्ट मनुख भगत बन जाता है, सूरबीर बन जाता है, दानी बन जाता है। जगत दे सारे दा सारा इतिहास ये दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमदा है, खोण वाले देण वाले सत्संग गुरु दी संगत भजन कीर्तन नाम अभ्यास बाणी दा पाठ मनुख नूं संतुष्ट करदा है, भगत बना देंदा है, सूरबीर बना देंदा है, दानी बना देंदा है, संपन्न बना देंदा है, महान बना देंदा है और उसके अंदर परम आनंद पैदा करदा है। भगत एक खिड़ा होया फुल है, वो अपना स्वपन बनदा है, अपनी गुणा की महक जो है बनदा है। इस तरह सत्संगी ये रब्बी दौलत सत्संग तो प्राप्त करदा है। इतने ही बचने सुगत प्रवान करने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। असी नाम अभ्यास करदे आया, वाहेगुरु मंत्र का जाप करदे आ करदे आ, गुरु तो वह सौगात प्राप्त करी जिन्हों कहिंदे ने संतुष्टि संतोख। और जैसे मन संतुष्ट होगा अंदर परम आनंद की वर्षा होगी, तो मन दे ते भार नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, ये दैवी गुण सानू प्राप्त होवन। इतने ही वचन इस सबूत प्रवान करने, क्योंकि दासा ने वापस भी नोटिंगम जो है जाना है, तो घंटा उत्थे हाजिरी भर के फिर थोड़े तक जो है पहुँचे हैं। इतनी सेवा प्रवान करनी, इस वक्त तक आप बैठे रहो, सुनन दा शौक मुख रखे तो थोड़े शौक तो सदके कुरबान साहिब ये थोड़ा शौक बनाई रखे, प्यार जो है बनाई रखे। बार बार सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
3: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
2: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

0: भगत सदना जी धंधिया विचों बड़ा कठोर धंधा करते ने। अमृत वेले उठ के दो चार बकरे रोज जबा करने ते सारा दिन मांस वेचना। पर कमाल दी गल इस धंधे विचों भी धर्म की इतनी उज्जवल महक पैदा हुई। आपने सिंध प्रांत विच थां थां ते भ्रमण करके लोगां नूं खुदा दे नाल जोड़िया, जीवां नूं परमात्मा की धुन दे नाल जोड़िया। जद एक फुल खिड़ पैंदा है महक वंडन लग पैंदा है, जद एक दीवा जल पैंदा है रोशनी वंडन लग पैंदा है, जद किसी हिरदे विच आत्म प्रकाश हो जांदा है वह चानना वंदन लग पैंदा है, वह सुख चैन वंडन लग पैंदा है, वह आनंद वंडन लग पैंदा है। और यह वंडना उस तों सुते सुत आउंदा है, अपने आप हुंदा है। जैसे फुल दे चों सुगंधी दा निकलना दरअसल उस दे च महक दा अधक होना है। इस वास्ते डुल डुल के वो बार पई पैंदी है। भगत दा हिरदा इतना आनंद नाल भर जांदा है, इतना गुणा नाल भर जांदा है, इतना शांति ते चैन नाल भर जांदा है कि वो डुल डुल के बार पैंदा है। सदना जी भगती भाव विच ऐसे लीन होए और अध्यात्मक गुणा नाल ऐसे भरपूर होए, थां थां ते भ्रमण करके इन्हां ही गुणा नूं वंडदे रहे, इसी सच्ची दौलत नूं वंड वंड के जगत नूं अकाल पुरख दे नाल जोड़दे रहे। अनेकां भगतां दे चों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच इक ए सदना कसाई पेशे विच ए भी भगत है, इसका भी कलाम है और इसका कलाम भी रहिंदी दुनिया तक अध्यात्मक शांति वंडदा रहेगा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: ही नहीं तो फिर मिटना भी नहीं है। अमिट दुनिया की प्राप्ति हो जाती है, अमिट संसार, अमिट आनंद, अमिट सुख, जो नेस तो नाबूद हो ही नहीं सकता। ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई, ऊआ खैर सदा मेरे भाई। उस शहर देच सदीवी खैर बने हुए हैं, सदा ही खैर, सदा ही चढ़दियां कलां, कदी माड़ी खबर नहीं आउंदी। जमीन देते कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे रोज कोई ना कोई माड़ी खबर ना आवे, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जिथे माड़ियां खबरां अखबारां विच पढ़न नूं मिल जो है ना मिलन। पर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे जिस शहर दा मैं वासी हां उत्थे सदीवी खैर है। कदी कोई माड़ी खबर उस शहर दी है ही नहीं, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई, ऊआ खैर सदा मेरे भाई। हे मेरे प्यारा उत्थे सदीवी खैर, उत्थे सदीवी आनंद है। मैं उस शहर दा वासी, मैं उस नगरी दा वासी, और उस नगरी दे वासी ही सारे लोग तुसी बनो। हकीकत है बैरूनी दुनिया विच जिस मुल्क दे सुख ज्यादा होवे वो मुल्क बाकी लोगां लई अपने मुल्क दे दरवाजे बंद कर देंदे ने। दुखी लई, कमजोर लई, गरीबां लई अपने मुल्क दे द्वार बंद कर देंदे ने। ऐसा असी धरती ते देखते हैं। एक प्रांत विच बहुत कुछ होवे ते बहुत कुछ प्राकृतिक संपदा होवे वो प्रांत भी दूसरे प्रांत लई द्वार बंद करदा है। एक व्यक्ति को बहुत कुछ हो जाए तो बहुत कुत्ते होंदे आए वो दूसरे व्यक्तियों लई दरवाजे बंद कर देता है। पर रविदास कहिंदे जिस शहर का मैं वासी हाँ बेगमपुरे का, इस शहर के बूहे हर एक लई खुले ने। कोई भी आवे इस बेगमपुरे दे च वसे ते आनंद लवे, सुख चैन लवे, मैं सब नू आवाज मार रहा, सब नू ढडोरा पिट के बुला रहा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

पाए। बचन सुन के ऐ लगे तां मैनू कह रहे ने। फिर हजूर ने आवाज दे के कहा, सावन मल अगे आ जा, पिछे क्यों बैठे? सावन मल अगे आ जाओ, पिछे क्यों बैठे हो? फिर अखां भर के रोंदिया गुरु अमरदास महाराज तक आया, आंदिया चरना टैपया, महाराज मैं बराबरी कर बैठा, महाराज मैं चरण पौल देती किसे, महाराज मैं गुरु बन बैठा। श्री गुरु अमरदास महाराज ने कहा, जा सावन मल तू बख्शिया गया, सावन मल तू बख्शिया गया, तेरी मंजी भी रहेगी, तेरा नाम भी रहेगा, तू बख्शिया गया। पता क्यों? गलती करके सिख माफी मांग ले बख्शिया जाता है। दुनिया के किसे बाजार में औगण नहीं विकते सज्जनों, एक गुरु के दर उत्ते औगण विकते ने। गुरु औगण ले लैंदा, गुण दे दिंदा, औगण विकण पलरी, एक गुरु का दर है। इत्थे पंड बन के औगणा दी लेके आओ, गुरु औगण रख लैंदा ते गुण दे दिंदा, एक गुरु की वड्याई है। गुर बाबे फिटके से फिटे, गुर अंगद कीते कुड़िहारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया के हथ ना विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे। एक गुरु का दर है, जिथे कोई गलती औगण करन तो बाद बस हथ जोड़ ले बख्शा जांदा है। ताइयों पातशाह कहिंदे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। पढ़ो पढ़ो ना।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है के मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रखिया दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकते। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सकल की चिंता जिस मन माहे
0: जिसते वृथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन की या कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: बत नानक जप एक हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: सबकी जोत सकल कट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: सब कुछ किसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: सबकी कला बिना कहतावे
1: जे को होए वह दासार
0: देन हार जाने गावार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थम है थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तरह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख का हे बिर लाई है
0: गुरब लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग तू तिसै चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर हो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुखो जल हर दर कह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार है
1: तेन साध के धोई धोई पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध उपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बेगम ते साधु राख है
0: अर्पण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिस का करना जोग
0: जिस दिन दूसर हवा न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रैणी
0: सबते ऊंच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिया तेह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ।

0: आनंद रूप मंगल सद जा कह
1: सर्व थोक सुनिया करता कह
0: राज महराज जोग मह जोगी
1: तपमय तपेसर कृष्ण मह भोगी
0: त्याई त्याई भक्तां सुख पाया
1: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
0: जाकी लीला कीमत नाहे
1: सगल देव हारे अवगाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूत
1: सगल परोही अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
1: जनदास नाम ते आवे से
0: देह गुण मह जाको परमाई
1: जन्म मरै फिर आवे जाए
0: पूज नीच तिसके स्थान
1: जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग
1: नाना पेख करे एक रंग
0: नाना विद किनो विसार
1: बाबे बनासी एक अंकार
0: नाना चलित करे थिन माही
1: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
0: नाना विद कर बंत बनाई
1: अपनी कीमते आपे पाई
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊं
1: जब जब जीवे नानक हर नाम
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगले आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब भवन
1: नाम के संगुदरे सुन सरवण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जा का सत स्थान
1: सत के वर प्रधान
0: करतूत सत सत जा की वाणी
1: सत पुरुष सब माहे समानी
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत्त
0: सत करणी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नाम गुरते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नित भू जय जे कोई
1: नाम जबरता की गत होए
0: आप सत की असब सत
1: आपे जाने अपने मितगत
0: इसकी सिफत सो करना हार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक जोत स्वभाव है सो वर्तिया
0: विस्मन विस्म भय विस्माद
1: जिन बुझिया तिस आया स्वाद
0: सबके रंग राज जन रहे
1: गुर के वचन पदार्थ लहे
0: होए दाते दुख काट न हार
1: जग संगत रह संसार
0: जन का सेवक सो वट भागी
1: जन के संग एक लिव लागी
0: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
1: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
0: आद सच जुगाद सच
1: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
0: चरण सत सत प्रसन्न हार
1: पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पेकन हार
1: नाम सत सत त्यावन हार
0: आप सत सत सब धारी
1: आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभक्ता
1: सुरत सत सत जस सुनता
0: भुजन हार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
1: कर्ण करावन तिन मूल पछाने
0: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया
1: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
0: भय ते निरपो होए बसाना
1: जिसते उपजा तिस माहे समाना
0: बस माहिले बस कटाई
1: ताको पिंड न कहना जाई
0: बूझे बूझ नहार विवेक
1: नारायण मिले नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: का सेवक नाम कै रंग
0: सेवक को प्रभ पालन हारा
1: सेवक की रखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभ धारे
1: नानक सो सेवक सास सास समारे
0: अपने जान का पर्दा ढक है
1: अपने सेवक की सर पर रख है
0: अपने दास को देव डाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आप पतरा कह
1: ताकि कदमित कोई न लख है
0: रब के सेवक को न पहुँचे
1: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
0: नीकी कीरी मह कर रख है
1: भस्म कर एलस कर कोट लाख
0: जिसका शासन काटते आप
1: ताको राखत दे कर हाथ
0: मांस जतन करत बहु भांत
1: जिसके कर्तव्य वृथे जात
0: मारे न रख है अवर न कोई
1: सर्व जिया का रखा सोए
0: काही सोच कर हेरे प्राणी
1: जप नानक प्रभु लख बडाणी
0: बारंबार बार प्रभु जपी है
1: अमृते मन तन तृपी है
0: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
1: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
0: नाम धन नामो रूप रंग
1: नामो सुखर नाम का संग
0: नाम रस जो जन तृप्ताने
1: मंतन नाम में नाम समाने
0: ऊठ बैठ सोवत नाम
1: कहो नानक जन कै सद काम
0: बोलो जस जीवा दिन रात
1: रब अपने जन की नींदा
0: करे भक्ति आत्म कह चाय
1: रब अपने से रहे समाई
0: जो हो वाह हो वत सो जाने
1: रब अपने का हुक्म पछाने
0: इसकी महिमा कौन बखानो
1: इसका गुण कह एक न जानो
0: आठ पैर प्रभ से हजूरे
1: कहो नानक से जन पूरे
0: मर मेरे तिन की ओट ले
1: मंतन अपना तिन जन दे
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता
1: सो जन सर्व थोक का दाता
0: किसकी शरण सर्व सुख पावे
1: इसके दर्श सब पाप मिटावे
0: अवर सियान सगली छाड
1: जिस जन की तू सेवा लाग
0: आपन जान न होवी तेरा
1: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
0: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
1: तिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
0: सतगुर से की करे प्रतपाल
1: सेवक अगुर सदा दयाल
0: सिख की गुर दुर्मत मल हिर
1: गुर बचनी हर नाम उचर
0: सतगुर सिख के बंधन काट
1: गुर का सिख बकार के हट
0: सतगुर सिख को नाम धन दे
1: गुर का सिख बट भागी है
0: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
1: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
0: गुर के गृह सेवक जो रह
1: गुर की आज्ञा मन में सह
0: आप उसको कर कष न जनावे
1: हर हर नाम हृदय सद ध्याव
0: मन बेचे सतगुर के पास
1: सेवक के कार्य रास
0: सेवा करत हो निकामी
1: जिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिस आप करे
1: नानक सो सेवक गुर की मतले
0: विश्वे गुर का मन मान
1: सो सेवक परमेश्वर की गत
0: सो सतगुर जिस हृदय हरना
1: हर बार गुर

0: क्या हो गया?
1: दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी, ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तुम परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहंदे ने। बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहिंदा संतां दी संगत दे आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना। बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नू दिते हुए ने। सीमत ने ये असीम हो सकते ने, उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए। पहले दर तक पहुंची है, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का और मुखी सजणा का। बार बार धन्यवाद। फुल चुकदी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

गया तुमर गत मैथ तुम ही जानी सदा कुर्बानी तुदया गयर दास जिया पिंड सब तेरा कव नानक सब तेरी वडिया ना न जाने मेरा।

आओ गुरु रूप गुरु प्यारी साध संग जियो फतेह दी सांझ पाओ जी गज के गचाओ जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु।

0: जी की फतेह। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कोटान कोट शुक्र है जो आपां सारयां नूं सतसंगत विच सद के लिआंदा। सतगुरां ने पावन पवित्र उपदेश बख्शिया जिस विच आप जी ने सरवण किया, अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम ते आई। सतगुरां ने वार वार वार वार समझाना किया, ये नाम तो बिना गत नहीं। हर की वडियाई वड्डी है, प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा। सतगुरु वार वार फरमान करके आपां नूं समझाना करदे भी ये सिमरन दे नाल ये सब तो उच्ची वड्डा साहिब उच्चा थाओं उच्चे उपर उच्चा नाओं। सो आओ आपां बड़ी प्यार दे नाल वाहिगुरु गुरु मंत्र नाल जुड़ना करिए जी। जिस तरह सतगुरु समझाना करदे, सरवणी सुनिए रसना गाइए हिरदय ते आइए सोई। सो सारिया ने बोल के कृपा करनी, वाहे कहना इनू सुनना, गुरु कहना इनू सुनना, तां जो ये मन अपना टिकाव विच सतगुरु दे शब्द द्वारा आवे। सो आओ जी बड़े प्यार दे नाल करिए शुरू। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे
1: ਗੁਰੂ।

I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru, I guru,
वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय
गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय
guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru,

वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु।

पुस्तक संध्या बादिंग सिलपुष भगत समादिंग मुक्त हूठ बबुक सारिंग त्रैपाल त्यौहार विचारिंग गल माला तिलकली लाटिंग दो तुर

माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई।

0: साहब, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे, गुरु सवारी, सत संग जी, वड़े पाग सतगुरां दे हजूर जुड़ के आप जी ने बड़े प्रेम नाल आसा की वार दे कीर्तन, भाई हरपाल सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब वालियां दे जत्थे पासों सरवण कीते अरदास मुखवाक सिंह साहब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी हजूरी अरदासी श्री दरबार साहब उन्होंने आप संगतां नूं सरवण करवाए हन। सो गुरमुख प्यारियां दा समूह संगत प्रबंधक सेवादारां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद जी। सतगुरु जी कृपा करन, चढ़दी कला नाल पंथ कौम की सेवा दे बल बख्शन। गुरु घर विखे दल पंजन गुर सूरमा बड़जोदा बहुपर उपकारी सतगुरां दा मेरी पीरी दिवस बहुत ही श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। विशेष समागम चल रहे हैं जिन्हां दे विच 23 जुलाई तो लैके 2 अगस्त तक आत्म रस कीर्तन दरबार हर रोज़ शाम नूं 6 to 9 हुंदा है। कल तो राग दरबार आरंभ हन, अज भी राग दरबार होणगे, कल तक 31 राग संपूर्ण होणगे। सो वध तों वध संगत जी हाजरी भर के लाहे प्राप्त करने। 1 अगस्त दिन शनिवार नूं सलाना नगर कीर्तन है जो सवेरे 9 बजे आरंभ होवेगा। कल नूं सवेरे माता भानी जी हाल विच श्री अखंड पाठ साहिब भी आरंभ होणगे। सो 2 अगस्त नूं सवेरे 6 बजे अमृत दा बाटा तैयार होवेगा। जिन्हां ने अज तक अमृत पान नहीं किया अमृत छक के गुरु वाले बनो। नगर कीर्तन वास्ते आप संगत वध तों वध सुखा प्रसाद भेट कर सकते हो। सो आप संगत जी हुण समा अमृतमई मुख वाक दी कथा विचार दा सेवा निभारे ने सिंह साहब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी जामनी साहिब उन्हां पासों आनंद माणिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: Family Care Pharmacy.
3: Pure BC vich homeopathic dawaiyan ch number 1.
2: Ena kolo tusi har tarah de vitamin supplements, herbals ate homeopathic products le sakde ho.
3: Har tarah de natural health products, compression stockings, orthopedic products vi le sakde ho.
2: Hun mobility aid rent ja buy vi kar sakde ho.
3: Free blister packing te delivery te naal naal har tarah de government te private claims vi lende han.
4: 3 locations to serve you. Surrey Delta and White Rock.
2: Ja call Kiran at 604-581-1900.
5: हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
6: हाय या सो द मुसिया बेबी या
7: मर्सी

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਮ ਭੇਰੂ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਠੇਠ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੁੰਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ। ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਮਸਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਠਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਖੜ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵੜੋ ਬਨ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੀ ਤਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਟੇ, ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਲੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੁਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ तो पति दे दुख विच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसे उलझन विच फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं आता या उसके दिमाग विचों गीत दियां लहरां नहीं निकल दियां तो जेड़ियां उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होता है ये वो कवि ही जानता है ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नूं सौं गए। आज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उन्हों निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नो लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। किन्हें पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोच दे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। आज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमकदा होया मामूली जिया तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहिंदे इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखे। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कह लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन। इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलापदे हैं। घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखदे ने पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी आउंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया है मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है। हां संपूर्ण हो गया तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने मैं खुद वेखिया ने। भजे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया गया ने अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे। जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए अश्चर्यता ते रहस दे चलीन हो गए एकदम आप ते सुरूर तारी होया। अरदास की थी हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा ते मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? तां कहिंदन अलहाम होया, आकाशवाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जयदेव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित हो। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जयदेव, अश्कबार हो बार बार सजदे छोए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, आज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमिया है। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण कीता होया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरत लीन करिए, तो उस राम दी आप तशरीह कर देने, उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा, और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है, परमाद पुरख वो फिर पूरे होया है। पुरख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया है, व्यापक है, वो पुरख है। परमाद पुरख मनोपिमंग, मनोपमा तो रहत है, दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नूं नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनूं सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा, उनूं जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनूं अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों? कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अग्गे दी कल्पना मन कर सकता है। जबान जिथे तक कथन करती है उत्थों तो भी अग्गे दी कल्पना मन कर सकता है। कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना दी प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना दी प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर दी क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा, वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा। मन दी सोच तो परे, मन दे विचार तो परे, इस वास्ते आप कहने मनोपिमंग मनो उपमा तो रहत है। परमाद पुरुख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रत आया है। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देच राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरुख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जांदा है, हैरान हो जांदा है, विस्माद हो जांदा है। जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके। फिर भी वो बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके। उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य विच जीवदा है, एक कवि रहस्य विच जीवदा है, एक संत रहस्य विच जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनू पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। तो इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने जितने विद्यालय ने ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया है, विस्माद नु खत्म जरूर किया है। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ए विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता दा जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता दा जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है। तो कवि विस्माद विच जीवदे ने, संत विस्माद विच जीवदे ने, भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परम ओ प्रकृति तो परे है। कहिंदे ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते विच एक गंदगी दा ढेर पिया, सवेर दा वक्त है, सूरज दियां किरणां उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दियां किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां दे तू है पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने परमद भूतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करन दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां। हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जांदी है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है, प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्यादि भाव रतन, परमद्भुतन परकृत परन जत चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है, परमात्मा दा नाम है, उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगा चल के इसे ही पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि नदनोद जस सिमरणे ना जन्म जराद मरण भयं। नहीं आउंदा जिहदे सिमरन करन दे नाल जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साढ़े देश के ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इसनु मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर पे सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर पे कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्ध अवस्था नु, पूर्ण वृद्ध अवस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख, मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करदे ने, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, हरी दा जो जन है ओदे नेड़े ए जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदे। इत्थे इक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जांदा है, पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान। जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदियां उमंगा हुलास दे कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति दे कोई फर्क नहीं पैंदा, उसदे चेहरे दे उत्ते ताजगी बनी रहिंदी है, उसके चेहरे के उत्ते आनंद बनिया रहिंदा है। उन्हें वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया, ये वृद्ध हो गया, ये कमजोर हो गया है। नहीं, उसका हुलास, उसकी उमंग, उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पर कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे का रोग भी नहीं आता। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे दे फरमान करते हैं, ना दनोद जस समरेन ना जन्म जराद मरण भयं, इच्छस जमाद पराभयं जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनू इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करे, जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर, जसवस सुकृत कृतन शुभ कर्म कर, ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है, इसनु तो कर्म, इसे एक शुभ कर्म तो अनेका शुभ कर्म जन्म लेंदे ने। अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म वो है जद हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है, तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जद शुभ दा चिंतन किया जाता है तो हिरदा शुभ हो जाता है, ते जैसे हिरदा शुभ होता है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जाता है। वह हर एक की शुभ कामना करता है, वह हर एक का शुभ चिंतक बनता है, पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है, कामना मैलियां होनगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है, उसका चिंतन ओतो कर इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं भवभूत भाव समभ्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं जो त्रैकाल दर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमया हुआ है व्यापक है भवभूत भाव समभ्यं जो हुण भी है पहले भी सी अगावी जो है होवेगा जो हर समय मौजूद है त्रैकाल दर्शी है भवभूत भाव समभ्यं परमन प्रसन्न मिदन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है जो अत्यंत परम आनंद विचलीन है तू उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है ओदे सामने जग तुच्छ है जोग साधना भी तुच्छ है और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी वो भगत उच्चा है जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है जोग जग नै फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर दे आप कहिंदे ने गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन जय देव आयो तस्सु फटन भवभूत सर्वगतन। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर और इस तरह जाप कर दिया ही तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन दे च ही संसार दे सुख ने परमार्थ दे सुख ने गोविंद दे सिमरन दे च ही लोक सवर जांदा है परलोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio station 1550 AM Gurbani segment tuhade tak Swargwasi Sardar Ajit Singh ji baad Swargwasi Mata Surinder Kaur baad di yaad de vich 1550 AM ton Gurbani prachar kita janda hai 1550 radio de utte Gurbani de kise bhi program nu sponsor karn vaste 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM Vaheguru ji ka khalsa Vaheguru ji ki fateh।
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 22.99 ਦਾ 4 ਕਿਲੋ ਟੈਲਫੋ ਮੈਂਗੋਜ਼ 15.99 ਦਾ ਬਾਕਸ ਅਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਸਨੋ ਬੋਏ ਰਸਿਡ ਪਟੇਰੋਜ਼ 3.49 ਦਾ

सतयुग। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे था। कोई ज्ञानवान ही इसनू जानदा है कि हर समय जीवन दे लक्ष्य ते साधन बदल दे रहे ने। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथ आओ। सतयुग देख जीवन दा लक्ष्य वास्तव की सी, सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथ आओ। अगे लक्ष्य धर्म सी, धर्म तो मुराद सच्चाई, धर्म तो मुराद परमात्मा, धर्म तो मुराद ईश्वर सच। जीवन दा लक्ष्य सच से, प्राप्ति दा साधन संतोख से, मनुख संतुष्ट से। और संतुष्टि ऐसा रथ है, इस ते बैठ के मनुख सच दी प्राप्ति करता रहे है, धर्म दी प्राप्ति करता रहे। इसनु प्रथम समय विच नाप दिया, फिर समय दा गेर चलदा रहा चलदा रहा, आखिर बहुगिणती दे जीवन दा लक्ष्य बदल गया, साधन भी बदल गया।

बाहर पाके चला गया, मिट्टी पाके चला गया। ते जे मैं बैठा रहा ते लोग कह देने ये ते बस सत्थर बैठ के ही बैठा होया, सत्थर मल के ही बैठा है, ये ते सिर्फ बैठा ही रहता है। जे बैठा ते आखिए बैठा सत्थर गत, जे चलना ता आखिए छार गया सिर गत, जे बोलाता आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहाता आखिए ऐस घटना ही मत। जी मैं बोलदा ही नहीं, खामोशी धारण कर लेना, तो कहंदे ने इहदे कोल कुवत गोयाई नहीं है, इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है, इहदे कोल अकल ही नहीं है। पर जे मैं मौका महल गल करा, बातचीत करा, तो कहंदे ने ते बड़बड़ करदा पै, बस बोली जांदा बोली जांदा। जे बोलां ता आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहा ता आखिए ऐस घटना ही मत। काई गाल ना मेवने करता ही रखे पत, बस दुनिया दा कम हो गया है निंदा करने और निंदा करन लई बहाने लबने। चल रहे है मनुख ले खाक उड़ा के चल रहे है, बैठा है मनुख बस बैठा ही रहिंदा है, बैठा ही रहिंदा है, बोले बड़बड़ करदा पे, चुप है, मूर्ख है, गर्ज के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है, और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहे है और निंदा करन दे बहाने लभदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इसका कोई इलाज भी नहीं है। औखद सबे की तेन निंदक का दारू ना है, निंदा ऐसी जहर है, ऐसी कुड़त्तन है जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है, इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल, मनमुख वसें तिस जिस तू चित ना आवे। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया है और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है, कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं, जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान कर देने दौलक दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे कल का भाव, गति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गया, ते नारद दा कम की है चुगली, इधर दी उधर, उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख दी तर्जे जिंदगी ऐसी बन गई है, महाराज कहंदे ने मनुख दा मन नारद है, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत केड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा, मन ते नारदी होया पे है, मन ते चुगल बखील होया पे है, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पे है। ये कलयुग दा प्रताप, समय दा प्रताप, ये धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे करदे ने। दरअसल गली दे च कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है, मनुख सुतंत्रता दे नाल अपना रस्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक तो उस विच जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठिया की भीड़, इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी

0: कर्म कांडियां दी भीड़, इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ दा कर्म कांडी हो जांदा है। और एते एक मन दा स्वभाव है कि एदे उते अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ दा। मनुख कहिंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने ते गलत किस तरह हो सकदे ने। दरअसल बहु गिनती ही गलत हो सकती है। किसी समय महात्मा बुद्ध ने बड़ा कीमती कौल अपने चचेरे भरा दे सामने रखिया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आंदी। बहु गिनती ते हमेशा ही गलत होवेगी। भीड़ हमेशा बुरियां दी आंदी है, नेक ते बहुत थोड़े ही थो। गीटियां ते पत्थर आम मिल सकदे ने पहाड़ां ते, हीरे ते किधर किधरे, संख ते सिपियां सागर दे तट ते भी लब पैंदियां ने, पर मोती ते किधरे किधरे ही उपलब्ध हो सकदे ने। किकर ते सारी धरती दे च मिलदा है, पर चंदन दा वृक्ष ते किधरे किधरे, जितने मिकदार दे कोयला निकलदा है पहाड़ां दी कुख दे चों, उतना सोना नहीं तो कल युग एक कलेश भरिया युग। पर कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़, तो मनुख दा मन कलेश में ही हो गया। झूठियां दी भीड़ दे झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ दे निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ दे लोभी हो गया है। इस तरह दी भीड़ दे मनुख जी रहे है। नारद नाचे कल का भाव, जती सती कह रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहे है, चुगल खोर हो गया है। इत्थे जती अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती जल रही है। इत्थे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय दी रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख दी तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग दी व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान कीती है, इन्हां शब्दां दी व्याख्या मैं पेश करन लगा। और आसा दीवार दा श्लोक है और भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी, जिस विच भाई गुरदास जी कहिंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे तो इसनु समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलदा रहा है, बार बार जन्म होंदा रहा है और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलदा ही रहेगा, जन्म मरण उस दिन मिट जांदा है जिस दिन वासना प्रार्थना दा रूप धारण कर लवे। कहिंदे ने मन ऐसा है, या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलन लग पई और प्रार्थना दे शुकराना धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जांदे ने। पर वासना ते चलदी है, अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकदा। इति वासना बद्धा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे च ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आउंदा रहे है। अक्सर पुन ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होन, पुन ना होवन। तो मनुख पछड़ जाता है, पिछे मुड़ जाता है। पर ऐसा कि कोई पापी नहीं, कोई थोड़े बहुत पुन ना कर दावे। कबीर सच कह रहे ने, पाप पुन दोए बहल बिसाए, पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासां दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीदता है, कुछ पुन खरीदता है। तो पाप पुन बराबर होण करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आंदा है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करदा है जीवन दी लालसा करके, पुन करदा है इस जीवन तो मुक्त होने वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते ने, तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होंदा है। तर्जे जिंदगी दे तौर तरीके जो बदलते ने, इस तब्दीली नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस ढंग नाल बयान करते ने, मैं अर्ज कर रहा हूं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਮਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 3.99 ਦਾ ਬੈਗ, ਵੱਡਾ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 68 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।